0: 在印度的菩提迦耶，慈济志工规划每个月举办《无量易经》共修。由于印度已经进入了雨季，地点也从摩诃菩提寺改到了慈济菩提迦耶的会所。值得一提的是，七月份的共修有盲人学校的老师和学生一起来参与。
1: 印度进入雨季，让原定于摩诃菩提寺举行的《无量易经》月共修移到慈济菩提迦耶会所。这次邀请国际佛教僧侣培训学校以及邦加罗尔摩诃菩提协会28位僧众参与，以巴利文恭诵《三皈依及心经》，《无量易经》则以印地语恭诵。
2: जो महान ट्रेडिशन से उन्होंने जो शिक्षा दिया है कि मतलब बुद्धिसत्त्व बन के लोगों के पास रहना, लोगों के साथ रहना, ये सूची फाउंडेशन बहुत अच्छे से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं।
1: 红柱大圣润自众生，慈济志工日前拜访潘奇希拉盲人学校，邀约共修，视障者也能拥有培植福德、亲近佛法的机会，因此校长亲自带领老师和学生出席。
3: और मेरे जो blind student है, इनको अनंत सूत्र का chanting सिखाया गया लगभग 10 दिन से। ये लोगों को बहुत अच्छा लगा, प्रयास किए, कोशिश किए, थोड़ा सीख लिए हैं chanting, बहुत अच्छा लगा सीख करके, और यहाँ का प्रोग्राम देख करके, सुन करके बहुत अच्छा लगा।
4: हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पहली बार आए हैं।
1: 学习意愿很高的他们很期待点字版的辅助。
5: जी हाँ, ब्रेल पेंटिंग में हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, उससे हमारे बच्चे बिल्कुल याद कर लेंगे, और हम भी इनको याद कराने में इनकी पूरी तरह जितना हमसे हो सकेगा सहयोग करेंगे।
6: इस बार तो तैयारी उतना नहीं था, लेकिन अगले बार से हम लोग कोशिश करेंगे इसके लिए।
0: 接下来为您联播志工早会。